0: 6 है, कोबन कोबन 300 होगा।
1: 6
0: कोबन 300 होगा। कोबन दिस इज पिन लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑन द नेक्स्ट वन आउट ऑफ द साइडिंग ओवर।
1: Roger that, lost property with the driver.
0: Thank you, Corbin. Pins out.